विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्थिपरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु।

0: Aha, na jo hai sanu fan dari ma, apni chaya liu puni chalga san fan sanu, dari ma ni kini romalu baga. Tapi kau masma rakhi sake pachi fir puni karya ma, swagat gana sahanchu. Asal tu mitra karya ma hamri bhaga hamri dhuti kau, abah puni ma antim samay ma antim saral ma puni ayi sake kicho. Kini puni pravidik mitra puni rakhna bhaga sa samay sake sake kesahi diri puni awala utahau dekhanuza. Jo mitra hanu sake dami lawki mitra hanu cha, kaya dekhpatu kau dekhanu cha. Namaste hajur.
1: Namaste.
0: Namaste, namaste, kasla kari halu namaste.
1: मगल से आली फलावड़ा तारा आले मगा
0: हाँ तारा आले जी संजय आराम नोचा
1: आराम है शुरू अन्नजर लाए
0: हमें लपन एकदम ठीक था अनिखाजा खाना भोगी बाकी था तारा जी
1: खाजा बाकी नहीं था अजर कुन बाकी नहीं था अनिसले तू एक एक चोटी खाने वाले रख कुरेरा बसीरा
0: हाँ वाके पने एक एक चोटी खाने वाले रख कुरेरा बसीरा खन वाके था मैं अपने प्रोग्राम सीधा रहने से अनिसंगे खाने आए हालांकि क्या इच्छा कार्यक्रम में आदि ये सर्ता मित्रा रे हमें लगा जाकर आनों उस कती ले खाने खाना बने आनों उस पानी रखने वाला तो आम्रों बने नवाई रहने आल के लिए फुर्सत पानी छुट्टे नवाई रखे को तो क्या इच्छा ना कुने दिन भाग्य ले साहरी बने सोई संग भेटा उला निसंग व्यवस्थित अपने जन भाका मार्फत को कुलाई समझना उनसा
1: बहुत माता आज कुलाई मिस्त माया मिस्त समझना बंचू
0: धन्यवाद
1: कौन उठाने की जग पाए कुलाई मिस्त माया मिस्त समझना बंचू रेडीजी अन्य बोल उनकी कुलाई बंचू रा मेरे काश मन जाऊंने छोरी सपना कुलाई मिस्त माया मिस्त समझना बंचू छोरा संदेश कुलाई संजी राखू छू मेरा अर्जेंट काठमांडू वाला घर आओ दे उनसे सुबह यात्रा बंसूर मेरे घर परिवार को लागी बंसूर बंदे छुट्टी छु नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते बंदे तारीख अपने भाग से तारा आ रही जी उनसे कल से देखी कार्यक्रम आ रही अपने भाग से पक्के पने यदि घर भने समय सके सके कुछ सदस्यले नेटो कार्यशक्ति हमरो बाका हमरो छोटू की मैं घंटा समय माला साथ दिनों हमने इच्छा वने फोन करने मित्र हमने जा किस तरह माया खाली खोले देखी सुजन तामंगा इतराम से पांगजी तेसे इतराम तामंगजी वने तेसे गरीब दराम से पांगजी बीमाला तामंग निशादी कार्य तिलक क्षेत्री डा तारा आले अंति मित्र हमने जा संपूर्ण मित्र ले देर देर धने देते धन्यवाद दीदे जैसे गरीब भाई रवि टाल में रहना होने राज्य से लापन एक मिस्टर में धन्यवाद दीदे वही तो पैर को सुख दुखा को साथ ही उकाली और अली अनुवंजन चौधरी को कार्यक्रम संसारी का मैं सपना कुआर विदा होना चाहन्छु और बहुत को इस धन्यवाद को बसाई समाज जल पाना चाहन्छु सपना हंचा वनी शवाई कर राम

6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागी यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN
1: उच्च गति भरपर्दो कनेक्टिविटी र बलियो नेटवर्क द्वारा संचालित
2: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बेलुकीको 8 बज्यो।

0: नयाँ नेपालको नयाँ रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
2: ओ मेज्यो नमस्कार है।